0: बाबा।
1: ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
2: क्या?
1: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
3: वो होने से क्या होता है?
1: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
3: मुझे भी नहीं आती।
1: मुझे भूख नहीं लगती थी।
3: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
1: दिल में दर्द होता था।
3: दर्द तो मुझे भी रहता है।
1: बस यानी कि तू गई काम से।
3: क्या?
1: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
3: वो क्या?
1: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
3: मारिया!
1: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
0: क्या हुआ योयो?
1: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
0: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
1: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
0: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
1: नहीं!
0: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
3: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
0: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

0: कोटों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: कोटों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंडनेल। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाइए उजाला रेडियो। उजाला रेडियो आपके साथ।

आजाद है नशों के बंदगी। जो कुछ तुझे करना है वो कर, कल से पेश कर, कल पर न छोड़ काम कोई देख बेखबर। कल होगा क्या किसी को भी कल की खबर नहीं, अख्तर ये कल तो दूर है पल की खबर नहीं।

जाए अगर खाना नाल मुहम्मद बन जाए अगर खाना नाल मुहम्मद बन जाए अगर खाना नाल मुहम्मद।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: चुप क्यों हो?
1: नहीं तो?
0: खोए खोए से क्यों हो?
1: नहीं तो?
0: फिर कुछ बोलो ना।
1: क्या बोलूं?

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। पेरमानेंस से माँ रिनिया सरोजिनी देवी पातन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 61 साल के आयु में इन जस्तख यार औत माँ रिनिया सरोजिनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। परमानेंस से माँ रिनिया सरोजिनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल की आयु में इन जस्तख यार औत माँ रिनिया सरोजिनी देवी पाटन दिन मारापिन की बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज शुक्रवार के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक फनाफन फंसूर तोथालफ्त दिला आरीना के मुर्दालय होर्नबुक इन अम्स्टरडम जोइटोस में और अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनिस घर घराना के लोगों में बसलूतन क्रिंग में आने वाले सोमवार को किए जाएंगे। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 46 29 64 64 64। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार पाटन दिन और परिवार मारापिन के दुख में शामिल है।

जलाना रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 26 तारीख जून का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही थी आरजे रशीदी, डंकी बेल, पैन दख्तु खवेंस, पैन वीकेंड मोइसे रही है। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रेको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रेकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 16 मिनट व्यतीत हो चुके हैं 9:37 ऊपर नहीं खुद मोर खालमा। चाहे जहाँ पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे, सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। मैं हूँ सुबह शिव गोविंद और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचती है वहां तक हम आप सभी को आज का सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। जो भी आज आप लोग करेंगे इस गर्मी मौसम में, मौज से करिए, प्यार से, दुलार से। हमारे प्यारे सुनने वाले, आज का प्रोग्राम कुछ मिलजुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करने वाला हूँ। और ये गर्मिया में देखब का करे खोई, कौन सा गाना आप लोग आज सुनेंगे? तो चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते एक सुंदर सा भजन जो आप लोग सुनेंगे अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में।

जय संतोषी माता इस तरह से खूबसूरत सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 26 तारीख जून का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन।

हमारे प्यारे सुनने वालों, है तो भाई ना वीकेंड वीकेंड शुरू हो गए हैं और सवाल है कि इस गर्म मौसम में का पकाओ खो यार, आज जबाल बताओ कौकन और का बनाओ खोई इस गर्म गर्म मौसम में। हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203630808 पर अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है या कोई गीत सुनना है। और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9204090807 पर आप उतार कर सके सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक, फन मान दख्त में फ्राइडे ना यार फन मान दख्त में सैटरडे।

कितना मोई गाना ऐसे ऐसे तुम ना देखो और हम तुमको चुरा लेंगे और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे।

वेल यार, दिल दिल मेरी ना माने, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू एड उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और देखा जाए सत्य भी प्रोग्राम को बैठकर सुन रहे खुद मुर्खा एंड यू एड उजाला रेडियो।

बलियारी गर्मिया में तोर दिल चाहे जोंची बोलते धड़कत हुई फल पर धड़कत हुई वेल चाहे जोंची करिए वेल चाहे बाहर जाइए वेल अब की बार जब बाहर जाइए तो छाता लेके जाइए चाहे पानी बरसे ना बरसे बाकी छाता लेके जाइए एंड नेम खनुखवातर में या वेल अगर आपको बाहर कहीं नहीं जाना तो घर में रहिए यार हमारे साथ दीजिए 12 बजे तक आपके साथ है सही आत्मा जी की आवाज़ में

0: रे ओ सनम, आजा रे आजा रे ओ सनम।
1: वल तुच बिन सोनी प्रेम डगरिया, बोले आजा रे आजा सनम। अवसर से चात्मा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

बलियर जादू है नशा है क्या गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए राजेश बैनर से भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं ना बैठ कर सुने काम करे हम सुन हम सही तो उसमें भाई जी वैरक्स आओ चलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ। एंड दल हक में भाई राकेश भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मुर्खा।

बलियर तुम्हें चाहते हैं हम हर जन्म में अन्न तुम्हें मांगते हैं हम। बहुत विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। करीबन 5 मिनट बाकी रहा 10 बजे में 5 मिनट फॉर 3 आवर। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, देखा जाए दलहा शहर में, देखा जाए भाई लक्ष्मण शहर में बैठ करके सुने खुद मूर्ख

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 26 तारीख जूनी का प्रोग्राम अजस्मंदा फ्राइडे वीकेंड। अरे यार बात खाऊं कोकन फंदाग का पकाओ को यार इस गरम गरम मौसम में, तो लोग पकाइए कि ना पकाइए आज, वाल दैट इज गोइंग ब्रोडाग। तो चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते, दिन में 12 बजे तक आपके साथ हम रहेंगे। दनहाख में भाई आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को सुने, खुद मोरख और ये गाना तुम्हारे नाम।

वेल यार, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और बोले मर के भी दिखाना है। कुमार सानू एंड अनुराधा पॉल ना, कुमार सानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने होफ दर्ब शहर में मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने अपने सुनुषक के लिए गाना को मांग किया है एंड वो भी प्यार के साथ। यू आर उजाला रेडियो जबाल हतिस बैना वीकेंड, गरम गरम वीकेंड बा आज।

तेरा ही याद आए। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और हमारे प्यारे सुने वालों हितेश बैना बैना तो लोग से बोली तो वीकेंड, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक बैठक गाना हो जाए, और इस बैठक गाना को गाने वाले होंगे विशाल हीरा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। वेल हमार रनिया आई बॉय

वेल वेल यार, हमारे रनिया बता दे बतिया, द यंग टाइगर ऑफ बैठेगाना विशाल हीरा, आई बॉय चलन दे

युवार उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, करीबन 25 मिनट व्यतीत हो चुकल है 10 बजकर। खुद मोर खालमाओ जो भी आप लोग करते होंगे प्यार से दुलार से कल दिखाई नानत वैरक सालमाओ। और चलिए इस बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो ये गाना पेश है सौंदर्य के लिए प्यार।

0: वेल वेल यार, तुमसे तुमसे बोले कितना प्यार है, बोले कैसे बताऊं, तुमसे प्यार है यार, कितना प्यार है तुमसे।
1: हर दुआ में तुम हो,
0: हर दुआ में तुम हो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, कितना सा बिसाल खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए अरुण बाबूलाल भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम या बो

राहुल वलियर बोले चांद को क्या मालूम, अवसर से करोड़ का दिल, चुराने वाला हंट मिले माइटी मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और अब की बार देखा जाए गायत्री आई ब्रेडा, लेकिन आज काम करे रोतरदाम में वैरक से गायत्री, अब ये गाना तुम्हारे नाम।

बल यार तेरे सिवा कुछ भी देखता नहीं, खोया हूँ बस तुझ में यार। क्या गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और जिस तरह से हम आप लोग बता चुके हैं कि का पकाओ कोई का खाओ कोई, वेल आज हमारे यहाँ सबको अपन हरिया उलुट डे शब्द वखानी को का मानता तेस वारम दोस का खा कोई पता ना है, भूजल भात खून या वेल मकल खून भूजल भात। और देखे जाए मीला भी प्रोग्राम को बैठकर सुन खुद मूर्ख एंड क्यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। आज सबको भूजल भात बनाइए बो या आई बोल चलन दे अमंग स्पंग यारा।

वेल यार, और इतना विशाल इतना मोई गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार यार, और देखा जाए वो कई समय पठाई से बोले सुभाष आज उर्दी के दाव मैथ वाइटिंग वेल फिश

और ओके छोड़ के ई गर्मिया में भाई अभी डोक्सा बनाएगा खूब तीता तीता डोक्सा लेकर और जाए परभा अमसरा में रोटी बनावे रोटी से के ए अमन लेकर यार अमन स्वीतिया रे और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो ये गाना पेश है भाई केस के लिए जो उर्दी के दाल और वाइटिंग बनाएगा और

बलियार जन्म जन्म का साथ है, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और पौने पौने पौने ग्यारह का वक्त एक वक्त फॉर एलव खुद मोर खलमाओ यू आर उजाला रेडियो आई बोल।

ये रिश्ता बस बना रहे, इश्क की बाजी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रही थी, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो और मेरे शहर में जहां पर इस वक्त खास करके रखा जाए रूबेन एंड सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्ख, तो ये गाना आप दोनों का नाम कर देता हूं बहुत ही प्यार एंड मोहब्बत के साथ। करीबन 10 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, अम सुलम सैतोस में हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बरकर से खुद मुर्ख।

बादल यार मेरी मेरी ख्वाबों के रानी बस तू आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, नाद ब्रेक नाद रिक्लाम, फिर हम आप लोग से मिलेंगे।

वाल हमारे प्यारे सुनने वालों, नाद ब्रेक नाद रखलाम, आप लोग से फिर हम मिलेंगे और कोशिश करेंगे ये गीत फिर आप सभी के लिए पेश कर।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 26 तारीख यूनी का प्रोग्राम। अच्छा स्पंदक फ्राइडा 7 मिनटन ओवर 11 एट लास्ट इर्च खत नु है जब लास्ट घंटवा देखिए कितना हल्दी दोन हो जाए 12 बजे तक आप लोग के साथ। इस वीकेंड में आप लोग जोचे भी करेंगे यार मोई से करिए आहिस्ता धीरे धीरे करिए वहां बहुत गर्म बात दिन भर पानी पिए न पकइए बाकी दिन भर पानी पिए या आई बॉय देखिए ध्यान वैरक साइन वैरक से मोई से काम करिए धीरे धीरे काम करिए। आप सभी को शुभ वीकेंड फैन वीकेंड तो खबेंस हमारे तरफ से यार। तो चलिए गाना की ओर जो गाना आप लोग रिक्लाम से पहले सुन रहे थे वही गाना फिर से हम आप सभी को सुना देते हैं। मंगनवा ब्राबी सालबा मोई गाना भाई यार।

0: वेल यार, मेरे नसीब में तू ही तू। आओ इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वाले, हम आप लोग से बता चुके कि कैसे पठाया रहा एगो ऐप, और वो आज बनाएगा उर्दी का दाल और वाइटिंग मछली, और ऊपर से गरम गरम डोक्सा बनाएगा खूब तीता तीता। और जब ऊना हो पाए तो खून भूजल भात बना लिए यार अंडा के साथ। और पर भाम सुलम में रोटी से कही गर्मिया में
1: तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं।
0: आओ यार,
1: हर खुश
0: तेरे बिना ये दिल लगता नहीं। दिल दिल जो भी करे है मोई करे है।

0: वेल यार, दिल नहीं लगता तेरे बिना, बोले दिल कहीं नहीं लगता। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, करीबन 15 मिनट व्यतीत हो चुका है, 11:15 ओवर 11, और आप लोग यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम शहर से प्रोग्राम को बना रहे हैं।
1: बेवफा होकर भी खुद को वफादार बताती है, जो दिल तोड़ कर किसी और की हो गई वो मोहब्बत नहीं, बस याद बनकर सताती है।

वेल यार, मैं भी आज तेरा इंतजार करता हूँ। बस यही मेरी दुआ है, तो खुश रहो। और इस तरह से गाना जो आप लोग सुने अरिजीत सिंह जी की आवाज में, वाह क्या गाना यार। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यार,

यूं ही खूबसूरती है। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, देखा जाए खासर के विनोद लक्ष्मण भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख। और ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं भाई।

0: झूम झूम गाए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने आकाश मिश्रा के आवाज में, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे अमसलम फैंस फोल्डर में एमी जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। तो एमी ये गाना तुम्हारे नाम का देता हूँ।
1: छोटे भी कहानी नहीं होती जो छोड़ जाए साथ बीच सफर में, उनकी कमी कभी पुरानी नहीं होती।

आओ बल यार तेरे तस्वीर से बातें करता हूँ, हर रात तुझे याद करता हूँ। आयुषर से अरिजीत सिंह जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। वेल हमारे प्यारे सुनने वालों, थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं, और करीबन 12 बजे तक आपके साथ हम देने वाले हैं, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और देखा जाए आलमेरे में जहां पर इस वक्त सुनीता भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम

वेल यार, कितना मोय, कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे अरिजीत सिंह जी के आवाज में, और इस गाने को पसंद करने वाला है वहां तरेंगे में, जहां पर इस वक्त श्रीमान रजिन खुनखुन जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। खुदे मोरखा

वॉरियर इस तरह से अरिजीत सिंह जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। करीबन 10 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, 3 मिनट फॉर 12 बैना बैना 3 मिनट फॉर 12 एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखो जय खास करके देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज में वीकेंड से तो लोग से बोली बैना बैना वीकेंड यार गर्म गर्म मौसम में का कर खोई

बल यार अकेला हूं मैं अवसर से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवनाथ जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 7 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, और चलिए गाना प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाते हैं। और ये गाना पेश है आप सभी सुनने वालों के लिए।

हमारे प्यारे सुनने वालों, यही आशा उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर कभी आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे यहीं पर उजाला रेडियो पर। अगर आप लोग बाहर जाइए तो

इसका है इंतजार, मैं हूं ना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। चलिए प्रोग्राम में एक आखिरी गीत हम ला रहे हैं और इसी गाना के साथ ही साथ हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। अपना वीकेंड तो लोग मोई से बिताइए, मोई से रहिए, मोई से पिए, मोई से खाइए, मोई से रहिए, जो भी करिए प्यार से करिए यार, दुलार से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज़।

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम, और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

रचना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी अंदर लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे।

सुनो मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: मना कर।
1: उजाला रेडियो पर हमारा हिस्सा का प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जब आप चाहें यहीं पर आपसे हम फिर मिलेंगे। सुनते रहना।

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

मौसम कहता है स्वागतम। लता जी के साथ किशोर कुमार से गीत आप सुने, फिल्म तोहफा से निकाला हुआ। और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी साहब।

कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी का दिल वाला। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप गीत को सुने और फिल्म माया से निकाला हुआ। एनु मुकेश जी, फिल्म मिलन का गीत।

और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। फिल्म जख्म का गीत आप सुने अलका याग्निक से, और ये उजाला रेडियो है।

एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे और फूल हैं फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। यस बॉस फिल्म का नाम, कुमार सानू एंड अलका याग्निक से आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में सुने वालों। एक बार फिर अलका जी

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

राम करे कि ऐसा हो जाए कि मैं जागूं तू सो जाए, मेरी निंदिया तोहें लग जाए। मुकेश जी की आवाज़ और फिल्म मिलन का गीत अभी आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में। अब हाँ, सुन गाना।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद साहब की आवाज में, फिल्म कैप्टन की शोर का गीत, उजाला रेडियो पर।

और देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे बिना। लता जी के साथ आप सुने उदित नारायण को, फिल्म फर्ज का गीत, और ये उजाला रेडियो है।

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऋतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ